प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तासे। मेरे संग

हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मिले कबहू अपनी कृपा धार हमारे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर कंट न आवे तू गुणवंता

तुम्हारे कौन क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विषम हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए।

घिरते, कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा। जित मिलया चूके सब सोग संतापे।

संग मोहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ गाय सिमरन गर्भना बसाए प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन ठहरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अंतन जागै प्रभ कै सिमरन भाव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साधु का संग सर्वन दान नानक हर रंग प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नाव निद्ध प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु का सिमरन जप तप पूजा प्रभु का सिमरन बिनसा दूजा प्रभु का सिमरन तीर्थ शनानी प्रभु का सिमरन दरगाह मानी प्रभु कै सिमरन हुए सो भला प्रभु कै सिमरन सफल फला

प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जने आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरे तन आनंद कनेरे,

सिमरन सहज समानी, प्रभु कह सिमरन निचल आसन, प्रभु कह सिमरन कमल बेगासन, प्रभु कह सिमरन अनहद चुन कार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जिन कहो प्रभु मया, नानक तिन जन सरणी पया। आर सिमरन कर भगत प्रगटाए।

संकेतेतरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा राम सुनत दर दुख लत्था नाम की महिमा संत तपस्या संत प्रताप दुर्त सबनस्य संत का संग बट भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुलक शबरना होए नान गुरमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सेमृति पेखे सर्व टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदि जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सेमृत वखियान योग अभ्यास करम

अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक बस्त कार्मी कोट गवावे एक भी ना दे दस भी हर ले तो मुड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर सिंह नाही चारा ताको की जय साध नमस्कार जाके मन लागा ब्रह मीठा सर्व सुख ताहू मन बुठा जिजन ब्रह्म कम मनाया सर्व थोक नानक दिन पाया अगंध शाह अपनी दे रास का बरते अंत उलास अपनी अमान कश बहुर शाल ज्ञानी मन रोस करे

बने सतार। साधु कै संग सो धन पावे, जिस तन ते सबको बरसावा। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधु संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधु संग सर्वथान गम, नानक साधु संग सफल जनम। साधक संग नई कशगाल, दर्शन भेड़ तो होत निहाल। साधक संग कलुकत हरा, साधक संग नरक पर हरा। साधक संग ईहा ऊहा सुवेला, साध संग बिछरत रेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साधक संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साधर दबसाय, नानक उदराय साध सुन रसाय। साधक संग सुनो हर ढाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साधक संग ना मनते बिसराय, साध संग सर पर निस्तराय। साधक संग लगे बरा मीठा, साधु के संग घट गए डीठा। साध संग भया गा गारी, साध संगत भई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध बेटे संजोग। साध की महिमा बेद ना जाने, जिता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा तय गुण तय दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूछते मुची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न भाई सलूक। मन साचा मुख साचा सोए, अवरना पेखा एक असबिन कोए। नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी।

ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर दान ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय अदा खियर ब्रह्म ज्ञानी सर्वगा ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जान ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं वर्ता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदा।

तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा मृत तैसी भी खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जबर ताय साई जुगत नानक पुरकये जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जिज जित कर राखे तैसा तिन नाऊ आपे करण करा मन जोग प्रभाव है सुई फन होग पसुरिया पे अंतरंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी बाधे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्त कर है अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बान प्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसुर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब का बिचारे कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते अंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म ने कोर कई कोट पर दर्प को हिरहे कई कोट पर दुख ना करहे कई कोट माया सरम माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाभो तित तलगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रथ भोगी कई कोट पंखी सर्भ पाए कई कोट पाथर बिरखन बजाए कई कोट बमन पानी बह संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र शेर शत्र सगल समग्री अपना सूतारे नानक जे जिस भाव तेस तेस निस्तार कई कोट राजस्थान सात कई कोट वेद प्राण सिमरथर शास्त्र कई कोट की रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी बेर स्वर्ण थीवे कई कोट किए रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी बेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख है किनर पिसाच कई कोट भूत परे सूगर मृगाच सबते निराज सब हूं ते दूर नानका पलप तरिया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट डरक सुरग निवासी कई कोट

भला भला भला तेरा रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घटगर सुनी सरबन बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन पराय सोजन उदरणहार संत निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुख निहार।

ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनाब है तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेकर एक रंग, नाना विद किन्नो विस्तार पर विनाशी एक अंकार, नाना चलत करे खिन माहे पूरे पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बंत मनाई अपनी कीमत आवे।

ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर का सेवक जन संग प्रभु का सेवक नाम का रंग, सेवक प्रपालन हारा सेवकी राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक, सो सेवक सा समार अपने जन का प्रदा ढके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपद राखे ताकि गदबिंद को ना लाखे, प्रभु के सेवक को ना बहुचे, प्रभु के सेवक ऊंचते उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दस प्रगटाया, निकी कीरे मैकल राखे भस्म करा लसगर कोट लाख है, जिसका साधना काट थे आपदा को राख दिख रहात, मान जतन करत बापान जिसके करत बिरथे जात, मारे ना राखे वरना कोय सर्व जिया का राखा, सोए काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभु लख बिडाणी, बार बार बार प्रभु जपिए पिए अमृत मंतंत्र पिए नाम रतन, जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नाम रूप रंग नाम सुख नाम का संग नाम रह, जो जंत्र बताने मंत्र नामे नाम समाने, उठत बैठ सुभत नाम कहु नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जिबा दिन रात प्रभु ने जन किन्नी दात, करे भगतात्म कै चाय प्रभने सिंह रहे, समाए जो हो वह सो जाने प्रभने का हुक्म पछाने,

अष्टपदे जाचक जन जाचा प्रभुदान कर कृपा देव हरनाम साजना की मांगो दूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गामो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्याम चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नैत नीत गोटे को आधार नानक मांगे राम ब्रह्मसार प्रभु की दुष्ट मांस हुए अरस बाबे बिरला कोए जन चाख्या से जंत्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुभर परे प्रेम रस रंग बजे चाओ साध के संग परे शरण आन सब दया गंधर प्रकाश अंदरले बलाग बड़भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए सेवा की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवा किन्नु सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इशपुन्नी सरदा सब पूरी रबरिया सत्संग जूरी इसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सोग बिसरे जय कहला भाने सोग बिसरे जय किया जाने सोग बिसरे जन सब कुछ दिया सोग बिसरे जय जीवन जिया सोग बिसरे जय अग्न में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सोग बिसरे जय बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडा गुरु पूरे तत् यह बुझाए प्रपना नानक जनते आया साजन संत करो एक मान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अपरे नाम जपावो भक्त पाए तरिये संसार बिन भक्ति तनु शीशार सर्व कल्याण सुख निध नाम बुढ़ जात भाई विश्राम सकल दुख अवतनास नानक नाम जपो कुंतास उपजी प्रीत प्रेम रह चाओ मंत्र अंतर यही स्वभाव नेत्रो पेग दर सुख हुए मान भिक्षे साध चरण तुय भगजना के मंत्रंग बिरला गु पावे संग एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कहीं ना जाए नान करया सर्व समाये प्रभक्ष शांत दीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटां करत प्रतपाल आदपुर कारण करतार भगजना के प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हीतम निर्गुण यार नीज अजान नान तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मोह पाए एक निम करके गुण गायन कराज भोग बढ़ियाई हरके नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तन मंदिर दे बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगा सलो

चिंता जाय मिटे अहंकार सजन को कोई ना पहुंचनार सिर पर ठाडा गुरसूरा नानकता के कार्य पूरा मद पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परमानंदर जामे पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपां लख होहे ता इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म है।

सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग सिकूद पावन के गौन कव जात निवारे पारी पजान के पहु पली बेद न्यावत सीस न जात विचारे एते पहे तो कहा पहे पूवत अंत को ना गही पाहे पधारे जीत

प्रिया एहन साहज सुभाए दर्शन प्रस्याय गुरु का जन्म मरण दुख जाए।

चना सुबार से सुख कर पसाओ दुख विचार से सहसा मूल नाह सर प्रचार से तिना मिलिया गुरियाए जन को लिखिया मृतर का नाम देवे दिखिया चल सगुर पाए पवे न पिखिया जाको मैल हजूर दुजन में कैस दर दरवाणी नाहे मूल पुछ तिस छुटे तक बोल साहिब नजर जिस कल्याण आप जिस नाही दूजा मत कोई टाए सारे सा जन सब सोए नाओ नानक बसीस नजर।

चौथा तिनी अंतर हर आराध्या जिन को तोर लिखिया लिखत लारा तन की बखिली कोई क्या करे जिस जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के

बिन प्रतीत कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गुमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराए है तेहा हो करी वख्यान। सूही महला चौथा घर सतवा एके ओंकार सतगुर प्रसाद। तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहेब गुणी निदाना। तुमरी महिमा भरना साको तू ठाकर ऊच भगवाना। मेरे हर हर नाम ता सोई ज्यों भावै त्यों राख। मेरे साहेब मैं तुझ बिन अवर न कोई।

हर जन अरोग भय, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके होमे रोग गए। रहाओ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै, गुण रोगी विच होमे कार कमाई, जिन की है तिसे न चित है, बौपड़ै हर गुरमुख सो जी पाई। होमे रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला जू छूटै, जिस जन को हो बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आप वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। सूही महला चौथा, कीता करना सर्व रजाई, किश कीचै जे कर सकिया, अपना कीता किशु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखिया।

दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम त्याए दोए कर जूड़ करो अरदास तुद भावै ता आने रास कर कृपा अपनी भगती लाए जन नानक प्रभ सदा त्याए सूही महला पंजवा धन सुहागण जो प्रभु पछाने मन हुक्म तजै अभिमान प्रया स्यों राती रलिया मन सुन सखिया प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लुकानी हरहाओ सखी सहेली को समझावै सोई कमावै जो प्रभ पावै

खात है पिर है भाई खोल्यो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे सार समाली मोह निर्गुण के दतारे बै खरीद किया करे चतराई एहो जियो पिंड सब थारे।

साध जना का दर्शन डीठा, सब हूं ना समझे अज्ञान गवारा, बहोर बहोर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिखै नाद करन सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंदे, रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीजै, कर कृपा मोह साध संग दीजै, तौ किस पाइय जो होय रेना, जिसे बुझाए तिस नाम लेना, रहाओ सूही महला पंजवा, घर मह ठाकर नदर ना आवै, कल मह पाहण लै लटकावै, पर मैं पूला साकत फिरता, नीर बरोलै खप खप मरता, रहाओ जिस पाहण को

निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही। पेखत चाखत कही है तंदा सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्त को जाने पूरे दूरे पापी पाप कमाही। सो किश कर जिद छूट है परानी हर हर नाम जप अमृत बानी। रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु न जाता। रंग है रख है पोचार माटी का भांडा अत कुचील मिले जम डांडा। काम क्रोध लोभ मोह बाधा वहां गर्त मह निगरत जाता। नानक की अरदास सुनी जय दूबत पहन प्रभ मेरे लीजै। सूही महला पंजवां जीवत मरे बूझे प्रभ सोए जिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इयो दुरत तुरियै सुन साजन इयो दुतर तुरियै मिल साधु हर नाम उचरियै। रहाओ एक बिना दूजा नहीं जानै घट घट अंतर ब्रह्म पछान पार ब्रह्म पछानै। जो किश करै सोई पल मानै आदि अंत की कीमत जानै। कहो नानक जिस जन बलिहारी जाकै हृदय वसै मुरारी। सूही महला पंजवां गुर परमेश्वर करनै हार सगल श्रेष्ठ कौ दे आधार। गुर कै चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तंत जाए। रहाओ पवजल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवै शांत। सतगुर की रेण वटभागी पावै नानक गुर को सद बल जावै। सूही महला पंजवां गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटा का अंतर जामी। रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत साची पूर्ण निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही। जन्म जन्म कै किल जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला। नानक मांगै संतर वाला सूही महला पंजवां दर्शन देख जीवा गुर तेरा। पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एह बनंती सुन प्रभ मेरे। देह नाम करे अपने चेरे रहाओ अपनी शरण राखो प्रभ दाते। गुर प्रसाद किने विरले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता। चरण कमल वसै मेरे चीता नानक एक करे अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास। सूही महला पंजवां मीत साजन संत सत बंध पाई सतकत पेखो हर संग सहाई। जत मेरी पतव मेरी तन हर नाम सुख सुख सहज आनंद विश्राम। रहाओ पार ब्रह्म जप पहर सनाहा कोट आवद तिस बेदत नाहा। हर चरण सरण गढ़ कोट हमारे काल कंटक जप तिस ना बिदारे। नानक दास सदा बलिहारी सेवक जंत राजा राम मरारी। सूही महला पंजवां गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद बिनोद मंगल सुखताहा।

सगलो साज रख्यो पसारा रहाओ बहु बिंद रूप रंग्या पारा पेखै खुशी भोग नहीं हारा सब रस लियत वस्त्र निरारा वर्ण चिहन नाही मुख न पमासारा कहो ना अनजाई खेल तुहारा नानक रेण संत चरनारा सुई महला पंजवा तो मैं आया सरनी आया भरोसे आया कृपा आया ज्यो पावै त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरै पठाया रहाओ महा दुतर माया जैसे पवन चुलारिया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गिरह अंध कुपाया पावक सगराया गही ओट सदाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा घर छेवा एके ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बिनंतिया मिलै नाम आधारा तुठा साचा सचा साहेब ताप गया संसारा भगतां की टेक तू संतां की ओर तू सचा सिरजनहारा रहाओ सच तेरी सामगरी सच तेरा दरबारा सच तेरे खा जीनिया सच तेरा पसारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दर सारा हाओ कुरबाणी तेरिया हाओ कुरबाणी तेरिया सेवकां जिन हर नाम प्यारा सबै इच्छा पूरिया जा पाया अगम पारा गुर नानक मिल पार ब्रह्म तेरिया चरणा को बलिहारा राग सूही महला पंजवा घर सतवा एके ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाए है जिसनों हो है दयाला साई भगत जो तुद पावै तू सर्ब जिया परतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुद पावै सो प्रवान मन तन तू है अधारी रहाओ तू दयाल किरपाल किरपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह अपार अत ऊंचा कोई अवर न तेरी पाते

केसा का कर चवर टुलावा, चरण तूड़ मुख लाई रहाओ, जन्म मरण दुहू मह नाही जन, पर उपकारी आए जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से तीरा ते, सच्चा सुख सच्ची वड्याई, जिस किस तिन जाते। पखा फेरी पानी ढोवा, हर जन कै पीसन पीस कमावा, नानक की प्रभ पास बिनंती, तेरे जन देखन पावा। सूही महला पंजवा, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, आपे करने हारा, चरण धूड़ तेरी सेवक मांगा, तेरे दर्शन को बलिहारा, मेरे राम राय ज्यों राखै त्यों रहिया। तुद भावै ता नाम जपावा है, सुख तेरा दिता लइया, रहाओ मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जिसनू आप कराए है, जहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए है। सिमर सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमा तुमरा द्वारे पा आया, नानक को प्रभ आपे भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। सूही महला पंजवा, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै

अमृत बचन हृदय और तारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़ अवर न कोई जिसनु लाए लह सो लागा भगत तुहारा सोई दो कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तुठ पावा सास सास नानक अराधे आठ पहर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दो कैसा पावा है बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवा मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पहो किस नाही जम नहीं आवे नेरे रहाओ जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख ना सा तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ध्यान सुख फुल पायन आठ पहरे आराधा तेरी शरण तेरे प्रवास है पंच दुष्ट लय साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिनकल राखी मेरी सूही महला पंजवा सगल त्याग गुर सरणी आया राखो राखन हारे जे तू लव है तित हम लग है क्या एह जंत विचारे मेरे राम जी तू प्रभ अंतरजामी कर कृपा गुरदेव दयाला गुर गावा नित स्वामी रहाओ आठ पहर प्रभ अपना त्याई गुर प्रसाद पौ तरिया आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्यायो मरिया सफल जन्म तिसका जग पीतर साध संग नाउ जापै सगल मनोरथ तिसके पूर्ण जिस दया करे प्रभ आपै दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सादर वाला राग सूही अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

तू वसह मन मह सहज रस रस मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रगेतड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चल है गुण नाल नाही दुख संतापना।

सच्ची सिवत सच्ची सलाहा पूरे गुर ते पाए तन मन सब किश होए तन मन सब किश हर तिसकेरा दुरमत कह न जाए हुक्म होवे ता निर्मल होवे हुक्मै विचों जाए गुर की साखी सहज चाखी तृष्णा अगन बुझाए गुर कै शब्द राता सहज माता सहज रिहा समाए हर का नाम सत कर जाने गुर कै पाए प्यारे सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच नाए प्यारे एको साचा सब महवरत बिरला को विचारे आपे मेल लय तां बख्श सच्ची भगत सवार सचो सच सच सच वरत गुरमुख कोई जाने जमण मरना हुक्म वरत गुरमुख आप पछाणे नाम त्याए तां सतगुर पाए जो इछै सो फल पाए नानक तिसदा सब किश होवै जे विचों आप गवाए सूही महला तीजा काया कामण अत सवाल्यो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुर का शब्द समालै हर की भगत सदा रंगराते हौमै विचों जाले वाहो वाहो पूरे गुर की बाणी पूरे गुर ते उपजी सच समाणी रहाओ काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन वसा अवदाता वसै सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसै अलख न लख्या जाई मनमुख मुगद बूझै नहीं बाहर पालन जाई सतगुर सेवै सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत भरै भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा इस काया अंदर नाम कौ निद पाई है गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तुलावै आपे तोलन हारा एह रन एह मन रतन जवाहर माणक तिसका मूल अभारा

गुरमुख जन्म सकारथा सच्चा शब्द लगान मातम राम प्रगासया सहज सुख रहन गुर का शब्द उसारिया दूजे पाए रचाना तिसना भुख न उतरै अंधन जलत फिरना।

सुभाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखण का चाओ हो तिस बिन घड़ी न जीवो बिन देखे मर जाओ ज्यों मछली बिन पानी आए रहे ना किते उपाए त्यों हर बिन संत न जीव।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही
1: श्री हर कृष्ण
0: ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए
1: श्री हर कृष्ण ते आइया
0: जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे हर सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावताए सब थाई होए सहाय तन गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावताए सब थाई होए सहाय तन गुरु तेग बहादुर सिमरिया

0: भय सहाय
1: सतगुरु आयो
0: शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सो चिंता लाए हमार सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाए हमारी
1: त्रासी महल्ला पन घर बाहर तेरा परवासी तू जन के है संग कर कृपा पीत में अपने
0: नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सास मसलत परवान पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संति एह विद जाति कीता जातो नाही मैनु जोग कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे
1: छोट महल्ला पन हम मैले
0: हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा रहा तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान देहो में रवाना तुम करो पला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम है हवाला राख संतन के पाछे कहो नानक हम है हवाला राख संतन के पाछे
1: फिर कर
0: बैसो